0: पिताजी पिताजी पिताजी।
1: हाँ,
0: आज तो दूसरा शनिवार है, मैं बहुत खुश हूँ।
1: ये तुम क्या कह रहे हो मनी? दूसरे

0: शनिवार है तो तुम इतने खुश क्यों हो?
1: पिताजी, आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे, कल भी रविवार है, मतलब 2 दिन की छुट्टी है, है ना?
0: हाँ।
1: मैं 2 दिन आपके साथ पढ़ाई कर सकूंगा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ।
0: अच्छा, अगर ऑफिस से फोन आ गया और कहा कि मेरा आना जरूरी है
1: तो आप कह देना, सर मुझे पता नहीं था कि आपका फोन आएगा, इसलिए मैं किसी जरूरी काम से बाहर आ गया हूँ। मैं सोमवार को ही ऑफिस आ जाऊंगा, ऐसे बोल देना आप।
0: वाह, मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि तुम इतने होशियार हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम पढ़ने में इतनी रुचि लेते हो। बताओ, आज तुम क्या पढ़ना चाहते हो? अपना मनपसंद पाठ मुझे बताओ।
1: पिताजी, मैं संसार की किसी बहादुर महिला के बारे में जानना चाहता हूँ।
0: ठीक है, ठीक है। आज मैं तुम्हें जॉन ऑफ आर्क के बारे में बताऊंगा। वे विश्व प्रसिद्ध एक अद्भुत और साहसी महिला थी।
1: वाह पिताजी, जल्दी सुनाइए, मैं बहुत उत्सुक हूँ।
0: अच्छा, ध्यान से सुनो। वीरांगना जॉन ऑफ आर्क का जन्म 6 जनवरी 1412 को फ्रांस के लॉरेन प्रदेश के डोमरेमी गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम इजाबेल था। वे एक धर्मपरायण महिला थी।
1: आगे सुनाइए ना पिताजी।
0: अरे मणि, सुना तो रहा हूँ, थोड़ा सांस भी लेने दो, तुम्हें तो बिल्कुल सब्र नहीं है।
1: हाँ पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ कि जॉन ऑफ आर्क ने आगे क्या किया।
0: अगर कहानी शुरू से नहीं सुनाऊंगा तो बीच से सुनाऊं, पूरी बात कैसे समझ पाओगे?
1: ठीक है पिताजी, अब आगे की कहानी सुनाइए।
0: उस समय फ्रांस के राजनीति और सामाजिक स्थिति बिल्कुल खराब थी। फ्रांसीसियों में एकता नहीं थी। फ्रांस का राजा चार्ल्स सता लगातार इंग्लैंड से हार रहा था। इंग्लैंड का राजा हेनरी पंचम ने फ्रांसीसियों को हर संभव तरीके से दबा रखा था।
1: ओह, वे तो बहुत ही क्रूर था।
0: इतना ही नहीं, अंग्रेज फ्रांसीसियों पर लगातार अत्याचार करता था, महिलाओं का अपमान करते थे और गिरजाघरों में भी भ्रष्टाचार फैला हुआ था।
1: अच्छा,
0: ये सब जॉन ऑफ आर्क ने बचपन से ही देखा था। अपने देशवासियों की दशा देखकर उनका हृदय दुख से भर उठा और वे रो पड़ती थी।
2: माँ, माँ, इंग्लैंड के राजा फ्रांस के लोगों पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? फ्रांस के लोगों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। ये सब तो इंसान के सहने की हद पार कर चुका है। महिलाओं का अपमान करना, उन पर अत्याचार करना, ये सब देखकर अब मुझसे सहा नहीं जाता माँ।
0: यह कहते कहते जॉन ओ आर्क अपने माँ के साथ रोने लगी।
1: अच्छा,
0: फ्रांस के सभी लोग मानो बंदी की तरह जीवन जी रहे थे। वे इतने दुखी थे कि सोचते रहते थे, यह दुख कब समाप्त होगा? उन्हें खाने पीने की भी फिक्र नहीं रहती थी। औरतें डर के कारण घर से बाहर नहीं निकलती थी।
1: पिताजी, इंग्लैंड का राजा तो बहुत निष्ठुर और निर्दयी व्यक्ति था।
0: हाँ बेटा मणि, ईश्वर की लीला कौन जान सकता है। जॉन ऑफ आर्क एक असाधारण लड़की थी। ईश्वर ने उसे विशेष गुणों के साथ इस संसार में भेजा था।
1: अच्छा,
0: उसके गुणों का वर्णन कभी समाप्त नहीं हो सकता। वह बहुत

0: दूध या पीने के लिए कुछ भी मिल जाए तो थोड़ी ताजगी आ जाएगी।
1: देखिए पिताजी, माँ गेट से आ रही है। उनके सिर पर भी एक पोटली है और हाथ में सब्जी का बैग भी है।
0: ओहो,
1: उन्हें देखकर तो मुझे हंसी आ रही है।
2: हसो हसो, माँ बेचारी थक गई होगी, ये तो सोचते नहीं बस हंसी आ रही है। आप भी हंसने की वजह मेरे सर पर जो भारी पोटली है इसे उतारिए, इतनी भारी है कि गर्दन तक दुखने लगी है।
0: हाँ हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे ये क्या है, चावल चावल है, क्यों लाई हो? मैं गाड़ी से जाकर ले आता, गर्दन तो नहीं मुड़ गई, इतनी बहादुर हो। लाओ, मैं इसे बरामदे तक रख देता हूँ।
2: मिल से कहा गया था कि चावल तैयार हो चुका है, इसलिए ले जाइए। पहले सब्जियां खरीद ली थी, इतनी सारी चीजें हो गई थी, फिर भी मैंने सोचा सब एक साथ ही ले आती हूँ, इसलिए सिर पर उठाकर ले आई।
0: ओहो मनी, तुम्हारी माँ तो बहुत बहादुर है, बिल्कुल जॉन ऑफ आग की जैसी। क्यों ना हो, तुम्हारी माँ की रग रग में मैतेई खून जो दौड़ रहा है।
2: अच्छा अच्छा, अब तारीफ मत कीजिए, मैंने अभी तक खाना भी नहीं पकाया।
0: लेकिन मनी की माँ, तुम जरूर थक गई होगी।
2: मनी
1: जी माँ,
2: जाते समय मैंने दूध उबाल कर रखा था, अभी लाती हूँ।
1: माँ
2: हाँ,
1: इसके बाद खाना पकाइएगा।
2: खाना तो मैं झट से पका लूंगी, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कभी नहीं थकती, अभी दूध लाती हूँ।
1: पिताजी आप सच कह रहे हैं, मेरी माँ सच में इतनी बहादुर है, इतना सारा काम करने के बाद भी वो कभी नहीं थकती।
2: मनी के पिताजी,
0: हाँ हाँ,
2: ये रहा दूध।
0: ओ दे दो दे दो।
2: बेटा
1: जी माँ,
2: ये रहा तुम्हारा दूध, मैं भी झट से पी लेती हूँ, बहुत काम है मुझे। रुको मनी, तुम लोगों ने अभी किसी का नाम लिया था ना?
1: हाँ माँ,
2: मैंने गेट से सुना था, क्या नाम था वो एक बार फिर बताओ ना, मैंने ठीक से नहीं सुना था।
1: माँ, फ्रांस की वीरंगना जॉन ऑफ आर्क। पिताजी मजाक में कह रहे थे कि आप भी उन्हीं की तरह बहादुर हैं।
2: अच्छा, जॉन ऑफ आर्क।
1: हाँ,
2: मैं भी उनके बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ।
1: अच्छा,
2: भाग्य में नहीं था इसलिए सरकारी नौकरी नहीं मिली, लेकिन मैं भी बीए पास हूँ। वह एक युवती होते हुए भी अक्सर लड़कों के कपड़े पहनती थी।
1: अच्छा,
2: वह इतनी साहसी और बलवान थी कि जो काम लड़के करते थे वो भी आसानी से कर लेती थी।
1: अरे माँ, आपने तो एक नई बात बता दी, पिताजी ने ये नहीं बताया था कि वो लड़कों के कपड़े पहनती थी।
0: अभी कहानी खत्म कहाँ हुई है मनी, मैं भी बताने ही वाला था।
1: ओ
2: अच्छा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़ा ही बता देती हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी पकाना तो है। ध्यान से सुनो, एक दिन जॉन ऑफ आर्क भेड़ों को चढ़ा रही थी, उसी समय अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी।
3: इन अत्याचारों के बीच में मासूम लोग अपने पशुओं को भरपेट चारा तक नहीं दे पा रहे हैं।
4: जॉन, उठो, उठो, तुम्हारी मातृभूमि तुम्हें बुला रही है, अपनी मातृभूमि को बचा लो, बचा लो।
3: कौन है? अभी अभी मैंने किसकी आवाज सुनी? यहाँ चारों ओर तो कोई भी नहीं है, जरूर ये ईश्वर का आदेश होगा, उन्होंने ही अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए मुझे बुलाया है। मैं कल ही फ्रांस के राजकुमार डॉफिन चार्ल से मिलने जाऊंगी, उनकी सहायता से मैं अंग्रेजों को अपने देश से भगाऊंगी।

0: मनी, मेरा तो हो गया, मुझे कुछ काम करना है। तुम अपने पिताजी के साथ बैठो और आगे की कहानी सुनो। मैं भी रसोई में जा रही हूँ, रसोई मुझे भुला रही है।
1: हाँ माँ, पिताजी आगे की कहानी सुनाइए, आगे क्या हुआ?
2: उसके बाद जॉन ऑफ आर्क राजा डॉफिन की सहायता के लिए राजधानी सिनन की ओर रवाना हुई। सिनन वहाँ से लगभग 500 मील दूर था। इतना लंबा सफर एक अकेली लड़की के लिए बहुत खतरनाक था। उस समय अंग्रेज सैनिक महिलाओं पर अत्याचार करते थे। इस वजह से अपनी सुरक्षा के लिए जॉन ने लड़कों के कपड़े पहने। रास्ते में उन्हें कई विपत्तियों का सामना भी करना पड़ा।
1: पिताजी, जॉन ऑफ आर्क का साहस तो सचमुच संसार में दुर्लभ था।
2: हाँ बिल्कुल सही, अपनी चतुराई और साहस के बल पर वहाँ सिनन पहुँच गए। हाँ, राजा डॉफिन ने उनकी परख करने के लिए गुप्त वेश धारण किया।
3: प्रणाम महाराज, मैं जॉन ऑफ आर्क हूँ। मैं अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से बचाने के लिए आई हूँ।
1: तुमने मुझे कैसे पहचान लिया?
3: महाराज, आपके व्यक्तित्व और चेहरे की गरिमा देखकर ही मुझे पता चल गया कि आप ही राजा हैं। आसानी से पहचान लिया कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं।
1: तुम बहुत साहसी हो, इतनी कम उम्र में ऐसा साहस किसी असाधारण व्यक्ति में ही होता है। मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। आज से तुम्हें युद्ध की रणनीति और हथियार चलाना सिखाया जाएगा। तुम जल्दी भी सीख लोगी, ये भी मैं जानता हूं।
2: जॉन ने बहुत कम समय में सब कुछ सीख लिया। रणनीति बनाने में भी वह सबसे आगे निकली। 29 अप्रैल 1429 को वह ऑरलियंस पहुंची और 8 मई 1429 को अंग्रेज सेना को पराजित कर दिया।
1: अच्छा?
2: हाँ, उनके हाथ में विजय पताका लहरा रही थी। अंग्रेज सैनिकों को बार बार हार का सामना करना पड़ा। पहले अंग्रेज उन्हें एक साधारण नारी समझती थी, लेकिन वह सचमुच रण देवी की अवतार जैसी निकली।
1: अच्छा?
2: इसके बाद जॉन और राजा डॉफिन जाने का निश्चय किया, जो दुश्मन के हाथों में था। रास्ते में कई युद्ध हुए और अंत में फ्रेंच सेना विजयी हुई। 16 जुलाई 1429 को रेम्स में राजा चार्ल्स सप्तम का राज अभिषेक बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ।
1: पिताजी, वे तो बहुत साहसी नारी थी, है ना?
2: हाँ बेटा, वे सचमुच रण देवी की समान थी, लेकिन उनकी कहानी यही समाप्त नहीं होती। राजा अभिषेक के बाद जब वे घर लौटना चाहती थी, तब राजा ने उन्हें पेरिस विजय के लिए आदेश दिया।
1: अच्छा?
2: हाँ, वही से उनके जीवन का अगला और सबसे कठिन अध्याय शुरू हुआ।
1: ओह, तो वे फिर एक और युद्ध में जाने वाली थी?
2: हाँ बेटा, जाने वाली थी। ईश्वर के बनाए हुए हर व्यक्ति एक समान नहीं होते। हर इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है। उनके सैनिकों के बीच कुछ लोग उनसे जलते भी थे। कुछ देशद्रोही सरदार और सिपाहियों ने उनके खिलाफ साजिश रच दी।
1: अच्छा?
2: हाँ, एक युद्ध के दौरान जॉन ऑफ आर्क दुश्मनों के हाथों पकड़ी गई। उन्हें अंग्रेज के हवाले कर दिया गया। अंग्रेजों ने झूठे आरोप लगाकर 30 मई 1429 को सबके सामने उन्हें जिंदा जला दिया।
1: अच्छा,
2: इसे देख उन देशद्रोहियों का दिल पिघल गया। बाद में उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ।
1: अच्छा,
2: जॉन ऑफ आर्क के बलिदान ने फ्रेंच लोगों में देशभक्ति की भावना और भी मजबूत कर दिया। अंत में फ्रेंच सेना ने एकजुट होकर अंग्रेजों को फ्रांस से हरा दिया।
1: पिताजी, उनकी कहानी तो बहुत रोचक और प्रेरणादायक है। इतनी कम उम्र में भी वह किसी देवी से कम नहीं थी।
2: हाँ हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उनका साहस और देशभक्ति हमेशा याद रखी जाएगी। आज के लिए इतना ही बेटा।
1: जी पिताजी।
2: आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और महान व्यक्ति की कहानी पढ़ाएंगे।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अदोम न थोड़म ताबिरी बस आकाशवाणी इम्फाल के एफएम संगाई चैनल देखनी हौजिक संदोक सरी तुंगान तुंगान बा सेशक पा सेशक पी सिंगी खोंजल दगी मथंग मथंग होइना।

मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, जिंदा है ना ये नामुमकिन सपना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

0: Isa si tahan je ki bagalu ne na tanka kasi ga ne di ki lanthok jaba matanga si dalu jere adom na thorum ta biri basi mega harsha ma hum dasmik manga gi fm sangai channel de gini
1: के लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: ngoi ta mo gi tung da mi ya ma le le bis bo kana noi mi hai ma nu pi ni ni kai lo phi ma ta ma ga mo koi ta mo kana no si bo kana no mi nu pi si bo
1: a kana ni ba sakhi a
2: jie ai su yau zer li ye a phon he he tau zer pa do ai na ni tha pak ama ta mo ga sami na ru ba halak pa da निमित ताखरे ना युम द हनसिन बसु फरक तारे दना तामोना तामो गे युम द ओइन चलला से दना सुम लांग बिन रबा
0: करी तामो नुपि सिने हाय सि चुम राबा हायो से हायो इमी करी गिन तुमिन ले तुना चुम ले बसि बो न चिन द मुक्त खम होय बा
1: सखे सखे नंग नंग त तप थको कय दोर गे इमे सब नंग त ngang ne सेबा
0: सिदा बोइन कमाइन तप थको
1: ऑफिस की थबा मे जमीन रुबनी हलक पद थेंग दो खरे हाँ हिंग थार थिंदो खलुन पोराबनी हजिकी हेक थिंजिलुबाने
2: इचेसे खरा फाजन बियो नत्र बदिने काया नते चानर
1: बयो नंग सोंग त तुमि नले खो के दोरगे संध्या अंत तुमि लै खो
0: मसिने
1: इनोन हे
2: एंगोन दने खु चम चम थारप जे आइ खान दु लैबंग मग दि हाइबा आइ सुने बायम ने बजानि को आइ दु लै हुबा फोन तो न कुजे सराय
1: नते नते सखी नंग अंत तप खो के दोरगे अंत अंत चाव ग्रो मे जुन जे नो यानी नुक्षि ने लैबि न बदा करी काय रगे बा करी काय के करी काय के बा
0: आइ मसिने हम लाई तमो मसिने आइ ने पोंग न यम न नुक्षि से फोन द कॉक टॉक कॉक टॉक द ऑफिस से की पू पू द न चट को नंग द फेल रे नि ने मोय ता मो हम जी मंग न पीसी मई न थिन बी को मिद्रे बा हे नु पी का खलु ने गाड़ी सिदा नंग बु का खलोय मी नंग यार रो हे बना त्रा पे पे हम द
1: पाछ हे हे हे हे कनो सखिया कनो न थिन गो हे हे कनो नंग न नंग तोरी द पा सखिया संजा रे सी सी थांग सोरी सी पाई रे ने
0: ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇꯣꯝ ꯇ 이제 아이야말 안 그래 이제 아이 범묵당 학비요 다 지행나의 이세에게 맞품도 야말 안 그래 나나나 와칸 감타방가 마우다바다기 다모보 다모이 세행나 농세로바 아이 따기 원잉로바나 아이 이세에게 맞품다 탁세까지 나이기다 아이들 보고 하니까 야수 이제 다이가 농세 사나는 레미나바 이몽아마 부가이나바 탕질로바 콩탕세 아이 때게 일하는 왜 이런 데 이제 늪이 회비가 와버디 늪이 회비 떠나 강반이 하이버세 아이 이거 제다 클럭래 이제 아이 아무 한내 옛사래로 예제 아이 이제게 공속도 나이 와석자리 이제
1: 신진아
0: 아이 세기만 봤네 야말 안 그래 아도 뭐 아이 옥대 비엄마디 났디에 이제 아이 옥대 비엄마디 났디에
1: 신디야 샤키 마가 되게 말할 디 났디 마포로 이비나 마가 눕히다 라레 하이하이디 하이니 아도 그네 샤키 모바일 폰도 나오르바 모바일 폰부 마판마탐 짜드는 시즌으로바 아이기수 Nangina Panda, Chauruba Iralama, Langja Kramale. Punchigilan Panda might hear a land me more in Nangina Mandanashi, eh? Lou Lukna Lip Nang Abu, not people on the Ruidra. ನಂಗನ ಐಬು ನಾಕ್ಪಿರೆ ಹೈಬ ಖಂಗನನಬ ನಂಗನ ನಕುನ ಥಜಿನ್ ಮಪಾ ತಮ್ದನ ಪೈರಿಬ ಅಥೌ ಥಾಂಗ್ ಶೋರಿದೋ ಐಮುಂದ ಪಿರ ಕದನ್ ಪಿರೋಶಿ
0: ಉತ್ತಮ ಸೆ
2: ತಮ ಇಸೆ
1: ಸಂಜಾ
2: ಥಾಂಗ್ ದೈ ಮುಂದಂತ ಪಿಬಿಯುಬ
1: ಸಂಜಾ ಕರಿಗಿನ
2: ಥಾಂಗ್ ಸೆ ಪೋದನ ತೈ ಇಜ್ಜತ್ ಕರಕೆ ಥಾಂಗ ಸಿನ ನನೌ ದನೌ ಬಪರಾ ಮತ್ತ ಮೀಬ ವೈರಸದು ಥಾಂಗಸಿನ ಪಂಚಿ ಸೋಪಗಿ ನಾಗ್ದಲೈರಕ ಇಸೇಗುಂದ ನುಪ್ಪಿ ಒಯ್ಬಿಗಿ ಥೌನ ಸತಿ ಧರ್ಮಗಿ ಗುಣ ಚೇಂದಿ ಖಾಂಗ್ಬ ಗಂಬಗಿ ಥೌನಾದು ನನೌದ ಸುಪಿನ
1: ಐ
2: ಸತ್ಕರಗೆ ತಮ್ಮ ಐ ಸತ್ಕರಗೆ ಇಸೇ
1: ಸಂಧ್ಯಾ
2: ಸತ್ಕರಗೆ

ये आकाशवाणी इम्फाल का शंघाई चैनल है 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला। मैं वाइकोम सिंह खेंगानबा अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म न्यूयॉर्क से मोहित चौहान की आवाज में इस गीत के साथ। गीतकार है संदीप श्रीवास्तव और संगीत प्रीतम का।

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म आई हैड लव स्टोरी से सूरज जगन और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में। गीतकार अनविता दत्त और संगीत विशाल शेखर का।

अभी आपने सुना फिल्म एजेंट विनोद से हमसिका अरिजीत सिंह और जॉय का गाया गीत, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत प्रीतम का। साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के शांघाई चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम गीतमाला। अब प्रस्तुत है फिल्म सिमरन से सुनिधि चौहान का गाया गीत, गीतकार है प्रिया सरैया और संगीत सचिन जिगर का।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म जाने तो या जाने ना से रसिद अली और वसुंधरा दास की आवाज़ों में, गीतकार है अब्बास टायरवाला और संगीत ए आर रहमान का।

मखल मथिल की नुमाइब थोरम क्या संदोक चरीब से आकाशवाणी इम्फाल की एफ एम संगाई चैनल देखनी चथजरीब थोरम परेंगी नुथिल पुंग हूंग मिनट मंगा लाथोक चगनी यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग मरुप सिंह खनबीरपा इसई सिंह आकाशवाणी इम्फाल हौजिक लाथोक चरी मणिपुरी फिल्म इसई अहुंक मथंग मथंग खुदोल की अहम ताविर से इंस्पेक्टर युहेनबा फिल्म की सुस्मिता नाउबोय अनीपुन सकनी इसई आर के मीनारानी की मयेक्ता अहिबम टोनी सिंह सैरंग इसई तामीनर से

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: थोरम संदोक्तु ने तहान जरी वसे आकाशवाणी इम्फाल की FM संगाई चैनल देगनी। आकाशवाणी इम्फाल हाउसिंग का मुक्ता विरसी रेडियो क्लास चामरी मरिफु तरास सुबतांक अगपी गनी चामरी मरिफु तरा तरुक सुबतांक नसी की तांकक सिद्ध ले जरे क्लास 8 हिंदी लेसन नंबर 5 माधवी थोरमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस सामग्री शिक्षा मणिपुर की टेंगबांग लोइनना पुथोक चब थोरम नी ताविरसी रेडियो क्लास सामरी मरिफुतरा तरुक सुबतांका।

0: नाउबा, आज तो छुट्टी भी नहीं है। पिताजी भी ऑफिस चले जाएंगे। हम दोनों को कौन पढ़ाएगा?
1: दीदी दीदी, कल तो हमारा क्लास टेस्ट है,
0: है।
1: इसलिए गुरुजी ने आज छुट्टी दे दी। दीदी, हमारी बुआ कहाँ जा रही है? कपड़े भी बदल रही है।
0: मैंने कल उन्हें किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था। सुबह कहीं जाने की बात कर रही थी।
1: दीदी,
0: हाँ,
1: माँ से हमें पढ़ाने के लिए पूछे क्या?
0: अरे कहाँ, सुबह जल्दी उठकर सारे काम कर रही है।
1: अच्छा,
0: सुबह की पूजा पाठ कर ली, खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया, हमें दूध भी पिला चुकी है, अब खाना बनाने की तैयारी कर रही है। पिताजी के कपड़े भी धोने हैं। पिताजी के ऑफिस जाने की सारी तैयारी भी वही करेगी। हमेशा काम में लगी रहती है।
1: दीदी, बुआ का फोन आ गया।
0: बुआ, बुआ, आपका फोन आया है।
2: दे दो, मुझे दे दो। मैंने यहीं रख दिया था फोन। हेलो माला, क्या हुआ? मैं तो कब से कपड़े बदल कर तैयार हूँ। हाँ, परसों खरीदी हुई कमीज ही पहनने वाली थी। हाँ, मुझे तो लगा था कि तुम दूसरे कपड़े पहनोगी। नहीं, मैं तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रही हूँ। तुम मेरी सहेली हो, इसलिए प्यार से कह रही हूँ ना। क्या कहा, प्रोग्राम कैंसिल हो गया? अरे, तुम तो इतनी उछल रही थी, अब नहीं जाएंगे? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, आने वाले संडे को फिर से प्रोग्राम बना लेंगे। अब तो मेरा भी मूड खराब हो गया है। अच्छा, अगर तुमने कपड़े बदल ली हो तो क्या हम दोनों कहीं घूम आए? हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, रहने देते हैं। ठीक है, रखती हूँ।
3: अच्छा हुआ, बहुत अच्छा।
2: क्या हुआ, तुम दोनों बच्चे इतने खुश क्यों हो?
0: पता है बुआ, आपका प्रोग्राम रद्द हो गया ना, इसलिए।
1: हाँ बुआ, आपका प्रोग्राम रद्द हो गया ना, इसलिए आप घर से नहीं जाएंगी, आप यही रहेगी ना।
2: तुम दोनों के दिमाग भी ना, मैं नहीं जाऊंगी। तुम लोग सोच रहे हो कि मुझसे पढ़ाओगे?
3: हाँ बुआ,
0: कल हमारा क्लास टेस्ट है। माँ भी व्यस्त है और पिताजी भी घर पर नहीं है, इसलिए हम आपसे हमें पढ़ाने के लिए कहना चाहते थे। बस
2: इतनी सी बात, तुम लोग उदास क्यों हो रहे हो? बुआ है ना, कपड़े भी नहीं बदलूंगी। बताओ क्या पढ़ना है, मैं पढ़ा दूंगी।
1: बुआ,
2: हाँ,
1: माधवी का हृदय परिवर्तन वाला पाठ है।
2: अरे ये तो बहुत प्यारा विषय है। ये डॉक्टर कमल के उपन्यास माधवी का एक अंश है।
1: अच्छा,
2: आज मैं तुम्हें कल के टेस्ट के लिए जरूरी बातें बता देती हूँ, फिर किसी दिन पूरा उपन्यास भी सुना दूंगी।
0: हाँ बुआ, अब कहानी शुरू कीजिए।
2: शुरू करती हूँ, ध्यान से सुनना। माधवी कई दिनों से दिखाई नहीं पड़ी थी। पहले हमने उसे प्रेम से अपरिचित एक युवती के रूप में देखा था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वह पहली ही मुलाकात में धीरेन को अपना जीवन समर्पित कर चुकी थी,
1: अच्छा,
2: लेकिन उसे युवकों के चंचल हृदय से बहुत घबराहट होती थी।
0: बुआ, माधवी नायिका और धीरेन नायक है ना?
2: हाँ, बिल्कुल सही चंबी, तुमने बिल्कुल सही कहा। युवकों का प्रेम हृदय से नहीं, आंखों से उत्पन्न होता है, इसलिए माधवी को उन पर पूरा विश्वास नहीं था। लड़कियां अपने स्वभाव के अनुसार मन में प्रेम अंकुरित होते हुए भी मुंह से यही कहती है कि वह प्रेम नहीं करती। देखने की इच्छा होते हुए भी अनिच्छा प्रकट करती है, क्योंकि कठिनाइयों से प्राप्त वस्तु बहुमूल्य होती है। इसलिए माधवी भी धीरेन के सामने अपना प्रेम खुलकर प्रकट नहीं करती थी,
1: अच्छा,
2: लेकिन अपने हृदय में उसने धीरेन को मजबूती से बसा लिया था।
0: बुआ, अब तो कहानी बहुत रोचक लग रही है।
1: हाँ बुआ, बहुत मजेदार लग रही है।
2: हाँ सुनो तो सही, माधवी के चंचल हृदय में प्रेम का भाव और गहरा हो गया। जब धीरेन पास थे तब उसने इतना महसूस नहीं किया था।
1: अच्छा?
2: लेकिन जब वे दूर चले गए तब माधवी का प्रेम और भी बढ़ गया।
1: अच्छा?
2: लंबे समय तक धीरेन से ना मिल पाने की कल्पना से उसका दुख पहले से 100 गुना बढ़ गया और उसका प्रेम भी पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गया। परिहास में धीरेन ने जो बातें कही थी वह अब माधवी को बार बार याद आने लगी। वह बातें उसे बहुत चुभने लगी, जैसे एक विषैले सर्प ने काटा हो।
4: रुकिए बुआ, रुकिए रुकिए, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आप कह रही है कि उसके मस्तिष्क में विषैले सर्प की तरह बातें काटने लगी, ये कैसे?
2: तुम अभी बच्चे हो ना, इसलिए ये बात थोड़ी मुश्किल लग रही है। इसका मतलब सचमुच सांप ने नहीं काटा, ये एक उपमा है।
4: अच्छा।
2: अर्थ ये है कि धीरेन की बातें उसे बार बार याद आकर बहुत दुख देने लगी है। वह धीरेन से बहुत प्रेम करने लगी थी। और देखो, तुम्हारी किताब में ये पाठ इसलिए दिया गया है कि माधवी के स्वार्थ त्याग और दूसरों के हित के लिए किए गए कामों से हमें सीख मिले। फिलहाल इतना समझ लो, वही तुम्हारे लिए काफी है।
1: दीदी अब आगे की कहानी सुनते हैं। बुआ आगे क्या हुआ बताइए।
2: माधवी ने सोचा,
5: प्रेम का एक अलग संसार है। यदि कोई इस संसार में पदार्पण करता है तो उसके लिए सभी बहुमूल्य वस्तुएं मूल्यवान नहीं होती। सभी स्वादिष्ट भोज्य भी स्वादिष्ट नहीं लगते, बल्कि जिसे वह प्रेम करता है उससे संबंधित वस्तु मूल्यहीन होते हुए भी मूल्यवान और साधारण होते हुए भी अत्यंत प्रिय लगती है। अब मैं समझ गई हूँ कि यदि प्रेम किसी एक ही व्यक्ति पर केंद्रित रहे तो वह ढक्कनदार बक्से में बंद रखने की भांति बहुत पीड़ादायक होता है। यदि अपना यह प्रेम किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित

0: न रखकर समस्त संसार में बिखेर सकूं तो मेरा सारा दुख मिट जाएगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि इतना सारा दुख अपने हृदय में समेट कर मैं धीरे के आने तक जी सकूंगी। इस दुख को मिटाने के लिए मैं हैबोक पर्वत के किसी कंदरा में जाकर ईश्वर की आराधना करूंगी, साथ ही संकट में पड़े यात्रियों की सहायता भी करूंगी।
1: इस प्रकार माधवी का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने स्वार्थ त्याग करके दूसरों की सेवा करने का संकल्प लिया।
0: इस संसार में मनुष्य जाति में जन्म लेकर मात्र भरपेट भोजन करना और सुंदर वस्त्र पहनकर जीना व्यर्थ है, परोपकार ही श्रेष्ठ कर्म है। इस श्रेष्ठ कर्म के लिए स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है, शर्म और हया का त्याग करना चाहिए, दूसरों की आलोचना से नहीं डरना चाहिए, लोगों की दांत फटकार को भी प्रशंसा समझना चाहिए। हे ईश्वर, अबला नारी जाति में जन्मी मुझे समुद्र जैसा गंभीर और उदार हृदय दो, स्वार्थ त्याग की शक्ति दीजिए।
2: बुआ, माधवी तपस्या करके दूसरों का भला भी करती है ना?
3: हाँ।
2: वह भी हैबोक पर्वत की किसी गुफा में जाकर, और उन्होंने अपना स्वार्थ त्याग भी किया। अब समझ गया, आगे सुनाइए।
3: अब मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों को सब समझ में आ गया। समझ गए हो ना?
2: हाँ बुआ।
3: अब समझ गए हो इसलिए आगे सुनाने को कह रहे हो ना, तो सुनो। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, फिर उसके बाद माधवी ने ईश्वर से कहा।
0: हे ईश्वर, मुझे समाज का कुछ भला करने का साहस प्रदान करोगे? हे दयामय, तन से निर्बल, मन से भी निर्बल और अंधविश्वास के आवरण में जन्मी मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अंधविश्वास से ढके इस अंधकार पूर्ण समाज को स्वार्थ त्याग और सेवा का थोड़ा सा प्रकाश दिखा सकूं।
1: इस प्रकार माधवी ने मन ही मन अकेले हैबोक पर्वत की कंडरा में भगवान की आराधना करने का संकल्प लिया। सबसे पहले उन्होंने अपनी वेशभूषा और अलंकारों के प्रति मन को नियंत्रित करना शुरू किया। एक युवती के लिए स्वाभाविक श्रृंगार का त्याग करके उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण करने शुरू किए। इसके बाद उन्होंने अपने खान पान पर भी नियंत्रण किया। तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन का त्याग करके केवल चावल और नमक से ही पेट भरने लगी। इस प्रकार सन्यासिनी के समान जीवन व्यतीत करते हुए वह तपस्या करने लगी।
4: बुआ, माधवी तो बहुत साहसी थी ना?
3: हाँ।
4: एक युवती होकर भी वो हैबोक पर्वत की एक गुफा में अकेली रहती थी?
3: हाँ बेटा, अपने त्याग, साहस और महान गुणों के कारण ही वो प्रसिद्ध हुई। डॉक्टर कमल ने माधवी के चरित्र का सजीव चित्रण किया है। अब आगे सुनो। सुनसान जगह होने के कारण डाकू अलग अलग यात्रा करने वाले यात्रियों का सामान लूट लिया करते थे। तब माधवी बाल बिखेर कर जीभ बाहर निकाले और हाथ में तलवार लेकर जोर जोर से चिल्लाती हुई दौड़ पड़ती थी। इस प्रकार वह संकट में फंसे यात्रियों को डाकुओं से बचाती थी।
2: अरे वाह, कहानी बहुत मजेदार होती जा रही है और माधवी के विचार भी सचमुच सराहनीय है।
3: नौबा, तुमने बहुत मन लगाकर सुना है, मैं जानती हूँ। अब आगे सुनो। तब से ये खबर फैल गई कि हैबोक की देवी प्रकट होती है और हियांग अथोबा निकलता है। इसके बाद डाकू वहां जाने से कतराने लगे और उनका उपद्रव भी घट गया। ये सब उपन्यासकार ने माधवी के माध्यम से करवाया था, इसी बात को उन्होंने हमें बताया है।
5: धन्य है माधवी, तुम्हारी यह योजना 108 पंखुड़ियों वाले कमल की भांति कोमल अपने हृदय में वज्र जैसा कठोर स्वभाव तुमने छिपा रखा है।
4: वाह वाह, डॉक्टर कमल की लेखनी का क्या कहना, उनके शब्दों का अर्थ कितना सुंदर, गहन और हृदय स्पर्शी है। वे सचमुच एक अतुलनीय लेखक है।
3: फिर आगे डॉक्टर कमल ने क्या कहा, सुनो ध्यान से।
5: रुई के भीतर कीड़े का होना आश्चर्य की बात नहीं, सीप में मोती का होना आश्चर्य का विषय नहीं, काग पौधे के भीतर गांद का होना, मरुभूमि में मरुद्यान का होना और समुद्र की गहराई में पर्वत का होना असंभव नहीं, किंतु अबोध माननी हाथी और अपनी जन्मभूमि से कहीं बाहर न निकलने वाली माधवी, तुम्हारी योजना और विचारधारा विश्व से भरी है।
2: बुआ,
3: हाँ?
2: डॉक्टर कमल के शब्द इतने कोमल और मधुर होते हैं ना?
3: हाँ बिल्कुल।
2: उनके द्वारा लिखी गई कविताएं, कहानियां और उपन्यास के अंश माधवी का हृदय परिवर्तन पढ़ते समय उनसे प्रेम हो जाता है।
3: मैतेई जाति का दुर्भाग्य ये है कि स्वार्थ का त्याग करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। स्वार्थ त्याग रूपी ऊंचा और घने पत्तों वाला वह अमर औषधि वृक्ष देखना हो तो मणिपुर के ऊंचे पर्वतों पर चढ़कर बड़ी बड़ी नदियों वाली भारत की विस्तृत समतल भूमि की ओर दृष्टिपात करना होगा। वहां तुम अनेक विशाल वृक्षों को अपनी शाखाएं फैलाकर अपनी छांव में अनेक दीन दुखियों को विश्राम देते देखोगे। वह दाने दाने को मोहताज दरिद्रों को अपने फल खिलाते हैं और आंधी तूफान में फंसे लोगों को भी अपनी छांव में आश्रय देते हैं।
4: लेकिन बुआ, हमारे मैतेई समाज में इतने बड़े वृक्ष बहुत कम हैं। यदि मैतेई की धरती पर कोई बड़ा वृक्ष उग भी जाए तो वह पर्वत से ऊंचा नहीं हो सकता, इसलिए दूर समुद्र से चलकर भारत की समतल भूमि पर बहने वाली शीतल हवा भी मैतेई की धरती तक नहीं पहुंच पाती, है ना बुआ?
3: बिल्कुल सही कहा तुमने जन्वी। इस कठिन का अर्थ ये है कि मणिपुर में स्वार्थ का त्याग करने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है, इसलिए तुम लोग भी पढ़ लिख कर जब बड़े हो जाओगे तब दूसरों के लिए कुछ करने का साहस रखना। पढ़ाई भी मन लगाकर करनी चाहिए और दूसरों से प्रेम भी करना चाहिए।

0: tavire radio class chamriga marfutara taruk subatanka ngasigi tanka kasida tavire class 8 hindi lesson number 5 madhavi thorumasi department of education s samagra shiksha manipur gi teng bangalwena na puthok chaba thorumni
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: Hogzik Tavi Bissingi Mafamda, Matam Miseni Kaklantokchari Maruf Singh, Matam Nakanabu Sungai Vide, Kanghogde, Matam Nakaram Nahokiva Hayeng Dagidi Langbanta Hibido Horani Langbanta Sanglak Pagalwinana Langbanta Bu Saitaba Isheni Kaklantokchari Ta Sigi Sayuinesu Lantokraba Isay Singni Ahanbe Sedelezare Brahmachari Mayum Neta Chandra Sermon Sapa Isay Tavanu Kuraizam Gimayetani इसे ही से होना हो लांगबन था नंगन पुरक परा ताविर से ही

0: आखा चल की थोड़म क्या संदुकुना हाजरीबी आकाशवाणी इम्फाल एफ एम संगाई चैनल आकाशवाणी इम्फाल हौजिक नुमिदांगवायरों की पुंग मंगा तारे मणिपुरी मरुएब पाव तावेरसी
1: आकाशवाणी इम्फाल हौजु फावी मरुएब पाव डायरेक्टरेट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की डायरेक्टर एन जी रोमेन सिंह हायरी राइज से चे सिजिनदब अथुब ऑनलाइन की खुटांग मरुएब कया फंगन्नब ई के जेड मणिपुर हौदोखिब डायरेक्टरेट असिना अहानबनी जोरदान की अमानद पांथोप एशियन कैडेट एंड जूनियर जुदो चैंपियनशिप सना की तकमान लौरखी मणिपुर की जुदो सानारो लिंथो चनबी मुख्यमंत्री की सेक्रेटरीट तरान ओखरे सोशल मीडिया थागलप वारोल मुख्यमंत्री युना खेमचान है असीगुमलब सिंथानी साना खोनब की इवेंट सना की तकमान लौरप राइज अखी नाइना चौथोचनी भारत ने युम्बू ओइदुना तरा निपाल सुब ब्रिक्स मिफम हायेंगदगी न्यू दिल्ली दा हौरगनी मसिगिदा मपुंग फाना सेम साब लोइरे भारत मंदपमदा नुमिनिनी चाथागदा

0: अरे बनाते नक सुमुक्त खालोनी लोक अमदा कहिए निकलने कुन गरी
1: इतने में मा नशी ननाओ ने हिंजरी बसे इतने में मा दी तमोगी दमुक्त नीने करी गुंबा मखोई मम्मा मसादों ने हिंगलम थोलो बसु आई ने मखोई दुलेम कप थारोए
0: चिंके हाइंग करी गुंबा अंगा अंगा दुना मपागी खुंगुली रखला बमत मधुदा आई की पुंछी से करी हुए गनी आई मधुगी खलु बदा आई मथायम साय
1: इतने में मा मथा साबी गनो आई मग वापस मधु कदाई बस मगे आये बदो आई ने येंग लगा थब खुदी मुन ननाऊ ना लोई ने पंग थोको ने इतने में मगे ना कुंग वाई चिलन जरूरी दा ननाऊ ना
0: आई ने नंग बुत थाजे आई की थाजा बसे मंगन गनो
1: अलो इतने में मग वापस मधु
0: कई नो हायो
1: हंद क्रोर तरह की वाक वधर
0: आई ना भना बा ना कोई सारे लो ऐन तक ना गनी
1: सियाम नो आज
0: लेते नंगों ने पी देना कन्हा तो पी का दोनों
1: हो इतने में बा
2: अरे यारे यारे सुनो जी आप पता जरो को आई जी मातम पता की कशी थी
3: सर
1: तमो
4: आई चिंकई
1: तमो तमो ननाओ लग चरम लिमी आई ते मेरे वापस करें सुम ताना जरम बा अरे तमो आई जी तबक सुकल एवरी ननाओ मुझे
4: आई अब तक ऐ को नंग लाम्बे याम परे चिंकई इंगशी दिन गोंदे वाम हाई के
1: हाई भी होता मो
4: हंदक नंग सूरी बत तबक की ऐसी की मतांग दा डिपार्टमेंट कंप्लेन याम ले रे
1: तमो
4: आदु किशु मतांग ता नंग तबक ती शूद ना हाउखा की लंबी शेम बगी लुपा करोड़ अहम नंग लाउ थोकी बदो अदु की अचो वा थोक मसु होय रे या मनंग न सूरी बत थबक से इपेन पेन दे को मतुंग ददी खर चेक्सिन सुबो भई को
1: त तमो मदु इ मतांग दुरे बदी थबक सिंग दु अखै इते मेम ग तानर ग तौखिब ग तने
4: गोरी
1: अदु की सिम तक दा अखै इ मचक त अखै वि यिंग सिलियो म्यु सिंग अदुना तमो मदी ननाउ गी मरी दा
4: नो
1: तमो
4: आइ बीन हाइरि बसे पुन म खंगले ग हाइरि बनी को
0: कैनो म खै बवन हाइ बिरि दुपु सिंखाई सिबु अखोई की मीनत रो अखोई ने पान फरिंग आई दा अखोई को की मी सेम दना कना सेम दोई नो
4: नुक्षी नुक्षी
0: कना लाओ भी रखनो दा ऐसु मखोई बाबा धाई निंगो वाले यामले
4: अंग ऐंगो ने करी वाह निंगी बा आयो नाने करी वाह निंगी बाइंगों दा
0: मतम दो दा मखोई बाबा ने सिंखाई बु
5: तावीरे सुमंगलीला लो नहाएगे अहान बसरु लीला सनबी की बा नारोल खोंथांग आर्टिस्ट एसोसिएशन हमसे पुंग पम सिदा खुंद्राक पम रामेश कुमार खोंग बा वायलेंट ताविरेसी

0: भारत की अहान बा बेफ्टा अवार्ड्स फंगलेदुना मालेमदा मणिपुर की मिंगचेट पुरकपंगम खरवा फीचर फिल्म बूम MSFDS की पैलेस ऑडिटोरियम दा सितंबर की तांग 13 नोमाइजिंग नुमित की नुंगथिल पुंग 30 ताब मतमदा उच्चगदौरी लायंस क्लब ऑफ इम्फाल लेमरोल नशिनबा फंड रेजिंग इवेंट असिदा बूम फिल्म येंगबी हौरो डोनेशन कूपन सिंह MSFDS की काउंटर दा फंगबिगनी फीचर फिल्म बूम
1: Good evening, Manipur ki khudol ki ahum subida. Khanbirakli ba isai isi, matam isai khanbirakpa isai amakak thengna jare, SMS amakak thengna jare. Pukrambam Rita Devi ki naitong konjel da, Waikom Bihari na sairing ba matam isai ni, isai isi bukhoida biduna, SMS thabirakli ba marubas singh isi, Maiba Khul, mamang likai digi, Samson, Ranjita, Gita amadi, nanau haiduni virei, Marup Singh ne khanbirakli bisai khudol tamjari.

atopa mai phamamada ibung si marjit huidro subol yambiam lava tumu senapati kaisam kiamba asina chingba kaya ikoi koina phamladuna mathang numit ki lalong sinba oina khana nainari ahanba magtada ibung si marjina haudori tumu senapati aduga aigi laloi sing aigidamakta khwai mayamna sibakidana lanthingna bikhiba adugidamakta ngamkhai leitana thagachari ngasi asi kaksing langkhatpa ngamkhidre aikhoi su phana kannadi honabani lanmi masing yambasu aikhoi ni heli bani gol lanban budi thugai khre haye ngasibu kari karamba lalong sinsige haibdo khwai mayamna phungdok piudo tumu senapati na hairi yuvraj marjit karisu chingna biruganu hayengdi lalong atopa ma tawrasi kari karamba lalong no ibung si marjina ngaya khallaga samthare dakpi yudo senapati tumu senapati na hairi nakhoi gi ekhoi gi sagol tongba lanmi singna khong lanmi sing masen ya naringi da matam adumakta da lanlak phangtok tuna thauzin khraga panting nam khai badi safa gadra khali hoini hoini ibung si marjina yaning bo ulladuna khanghai hairi sagol lan missing adubu konung lan mina soidena tanaki gani matuda aikhoi apun balan mi khutpuna khoyam paisin badona laning han khraba singa do chop chop hatha bayan yar udrani laba nang su akala thoni nangi wa mit wa khul khara hayudana ibung si yambem labna asumna kauraga makhata na hairi ननाई लाबना थंगपाक पायरगा सगोल लालमीगी मांग थाजगे लंबी लिखुनमा इरम फाटनबा होनजगे मरक अदुदा अखोई मंगजल थंगबा खोंग लालमी सगोल टोंगबा लालमी लिलिचिन बियो ननाई सिरबजु ख्वागी पल्लीदा याचरम लगे ए करीगी बु यामबेम लाबना इचमचमना सिरुगदगे अखोई चु पल्ली फाटबा याउजगे याथंग पिना बियो इबुंग से युब्रास हाइक्रुजम निमाइना हाइरे इबुंग सि मार्जिना हाइरे पामबई अमनबो ओइरबसु हायेंगदि युमनाम हजारी गि लानमी पंथिंग थुगायरगा थौबाल यौनब संगसिन बतौसिको लानमी पुमनमक फरेदुदि तुमु सेनापतिना तेमसिन बोइना हाइरे मयाम तुमनरसि अदुगने पुंजा नायना सिनथा पुबसिंगदि मिकुप नाहोमसिंगने लैगदबनिको कोनुंग लानमीना अहिंग द हुरा लना तौरपय आइको चेकछिलुको छेनापति ननाय खोइ तुमजरोय अवा लैबारगी नाखन खुमले मिकुप खरेगी मतुंगदा इबुंगसी मार्जित की लानमी ngamnamak nakhoktuna tumna khre ahingi miseng khangduna ngaksen balanmi singni koichat chatuna mathau tawri asomdadi kamdawri mangsidam manglembagi yangoi shagol khuthau hainari bani लेजबी थादुना नुशित ममंग थारदुना सगुल थौखिदुना ngantana kanglewon yokre changsatta sagulamana pungjamada sunglep lepdana mail yangkhimari thawungami haini kaksingdagi lamyon phawba se mail kuntretani aduna changchit asida sagul thorabadi pungkhai amatang sangpham thui asigma makhalgi sagul khutawasidi karigumada sagul siningai oibeda sunatana सगोल साथौरीबा अदुसु थरक हुंगतनिङाइनि मसिपुमनमक मंगसिदम मंगलेमबना मुन्न खंगि मागे सगोल मरक मरकता पोथाली इसिंग पितेइ हानौ खरसु पिजदुना नानबी खोटपि तौ तौदुना चतकि मतम मांगनदुना थिनथाबयाबा खोंचत नति मागे खोंचत पुंग अमा फानिंगचित चंगहलि कंगला नोंचुप थोंगदा मागे सगोल खंखाम खाम खुर्जी खंगसिंग चिंखली मागे सगुल अयांगबा खुमांग अनि वांग न थांगलगा खंगथामु लेमाइद थादकी थोंगाकबा मुतुम मतुमना अफिंग अफाय ओइन लाउरे इदाव मंगलेमबा कमदौरे लानमाइ पाकलब्रो मोंग ताहुद्रे सिरुत अमुक तो नजरुकीगे कोन थोरप तम लगे मंगलेमबना असि हायरम लगा सगुल खंगथौ थौजिन करे महाकी लंबीदा कनाना सुखाम खिद्रे लनपाव अथु बलाक पनि हाइबा संत्री सिंह खंगी संगा युमजाउ ममांगदा मंगलेमबगी सगोल खाम लग कुमथरी मंगलेमबा थोंगाक पंगान बना
खंकाऊ कौर गई लानगम फिरान युलब्रो कदाई लानगम फिरान मंगलेम खुमी साचुगम हजारीना हई कक्षिंग पंथिंग हौरी पनिंग हंदुना थौबाल यौदोरम यारे ए श्रीवुद उनरुरसी नानमना तन्हाई हाइरी लनपाउ गाइबो ओइना अंगम्ब सिंगा वतानरिबसी पन्थब याबा नते इबान हेक चंगमिनरसी थोंगाकप नानमना मांग थारदुना मंगलेमब पुसिलक्तुना संगा युमजाउ कादा चंगमिनरे अनिमकना थौगलोन उल्लदुना निंथौ खुरुमी श्रीवुद खुरुमजरी श्रीवुद जौरजित महाराजना पाखलप तौना हंगली पंथरनु सत सत पाउदमु इना उबुंगो मार्जित फाबगी नुंगाइब पाउरा तमुने लानमी श्रीवुद कक्चिंगी लानबन मना उबुंगो गी लानमी तेंगोल न थुगाइक्रे मंगलेम मने खुमे हा करी हाइबा श्रीवुद महाराजना पाखलप तौना समथरदुना हाइरे मखोय गी लानमी कया मुनो श्रीवुद मना उबुंगो गी लानछोनबी लानमी चनी हुमद्रा हुमदोय दुगा कबो खरीना तेंगबांग बिरकप लानमी अपुनबदो लिंगम चौंगा रोम सूगनी खनजे मंगसीद मंगलेम खुमी फरे हजि कई हाइबनो श्रीवुद महाराज समथरे साचुगम हजारी लानमी थारो नत्रदो श्रीवुद गनी मंगलेम करीसु अकी अखंग हाई हजारी की मखाद लेफम थोप लानमी लिंग सूदे ननाय अखोगी सूब नंग चमंगा मरीफुदी यारे यारे मखा तारनु श्रीवुद चौरजीतनाजुमक लानमी थारगलगने ना खलो निब तौदन लाथेनौ साचुगम हजारीद तमुरो नुसी ममांग थाना यांगो सगोल थौथक्रो सना याथंग अदुमक तमजरुरगे मंगसीदम मंगलेम संगा युमजाउ मनुंगदगी मपान थोक्रे मंगलेम कक्षिंग माइकै पांगदुना मागी सगोल अयांगबा थौथक्रे।

को सेनापति श्री उज्जौजित मकुट थांगलप खामबगी मोहोंग उल्लगा हाइरी अहानबगी ओइना सगोल तोंबा लानमीगी हाइसिंगलबा हजारी अमा हाना थाखिसी मदुतना अथुबा पांबाई ओयनी श्री उज आचार्य गुरुना खंगनिंग नहंगे लान हाइबा हजारी कना ओइरबनो श्री उज ना खुमले गुरुदेव लनहांब हजारीबु सगोल तोंब लानमी चामगी लुचिंगोइना थानिंग श्रीउद अनुपानंद शर्मना नोलुकना हंगचै श्रीउद थोकचोम लनहांब फुंगानाय हजारीबु सु थाबियु अदुगा ननायसु इबुंग सिमारजितबु अमुकतंग थेम लगे यिंजरुगे ननाय गदी यामसु सानाजकी श्रीउद ना ngaiak khallag hairi गुरुनंदगी वाफमदसु तराम नोकचरी आचार्य गुरु सु इनाव खाम लिंगबियु आचार्य गुरु अपामचा अनिमक्ता मकोक नोलपना यानिंग बोले गुरु नहाइरे नसी नुमिदांग इपाइसा सगोल तोंबा लानमी मरकते याउजख्रगे इहे गुरुदेव न सगोल पल्लगा श्री उज्जौजित महाराज ना खंगहाय हाइरे गानबा दोलाई पाइबा अम थुनमक थारगा लनहांबा हजारी दो सगोल पुरगा लानफी सेलगा कोनुंग यौरकनब सिनख्रो थिल्ले थोंगसिनदा थौगल तौरिबा गानबना ममाय हाइफेट उलदुन हाइरे श्रीउ ननाय हौजुमक थोंगनब चेंजरुरगे अदुगने गानबा श्रीउ जोर्जिना मखाताना मुक नोचिले हजारी मसाथारगा सगोल तोंबा लानमी चाम चतकदबनी मदुसु हौजुमक सिल्लांगनब सगोल हंजबदा पाउपिरम श्रीउ याथंगदुमक गानबना असुमना हायरमलगा चेनख्रे श्री उज्जौजितना ngaiak amuk khallaga hairi रोमा सेनापति सु लान चनबा थौरांग तौरुरो तान्यै संगदा धोल पुंजाव थिन्दुना पना मरीदगी लानमी खोंगलो ngasi अहिंग मख खोंसानबा तविरुरो नतोनी बुंगो मारजितपु हिंगना फारो महाक पुखात पयादिको याथंगदुमक ngak tuna लान चचरगी

0: गीत की खुदल ज्ञानी सुबदा अनुराधा पोटवलमति उदित नारायण की अपुन बुखुन जिल्दा गीत ममू तमिनसे
1: यीशु हुआ

श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। जी हाँ, दिलों के साज से सजा आपका अपना हर श्रृंगार लेकर आज स्टूडियो से साथ हूँ मैं एक बार फिर आपकी दोस्त रोहिणी। मेरी दुआ सलाम दोस्तों आप तक पहुंचती है इन प्यारे से ख्यालातों के साथ कि दिलों पर करना हो राज तो नहीं जरूरत ताज की, रखिए बस एक लाजवाब अंदाज और सादगी भरा साथ। कुछ ऐसे ही अंदाज लिए आज गीत मेरे मनमीत का सफर तय करेंगे 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हां श्रोताओं, आइए आगाज करते हैं आज की हर श्रृंगार का इस प्यारे से गीत के साथ जो की है एक बार मुस्कुरा दो फिल्म से आशा जी और मुकेश जी की आवाज में। साथ ही आपको बता दें कि इस गीत को लिखा है SH बिहारी जी ने और संगीत से सजाया है ओपी नैयर साहब ने। ये प्यारा अंदाज आप

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: दशमलविक मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हर सिंगार। और दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी की जो परीक्षा होती है ना, बड़ी वफादार होती है, पेपर का एक क्वेश्चन तक पता नहीं चलने देती है। जी शायद इसीलिए समझदार शख्सियतें ख्वाहिशों के मोहल्ले से मुड़कर जरूरतों के गलियारों में मुड़ जाया करती हैं। यही हकीकत है और शायद यही सच्चाई। आइए सुने अगला गीत रूप तेरा मस्ताना फिल्म से। जी हाँ, जिनसे गुनगुनाया है लता जी और किशोर जी ने, और इस गीत को अल्फाज दिए आनंद बख्शी जी ने, संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। आइए सुने।

दोस्तों अगर कभी सोचोगे तो पाओगे कि जिंदगी एक किताब है, हर रोज एक नया पन्ना, कभी हंसी कभी आंसू, यही है इसका ढंग पुराना। जो समझ सके इसे वो खुश रहते हैं, बाकी सब थोड़े उलझे उलझे रहते हैं। यहाँ जिंदगी के अनुभव रंगों के इस रंग में रंगी ये जिंदगी की जो किताब है, इसको पढ़ते रहिए अनुभवों के साथ। फिलहाल आइए सुनते हैं एक और गीत, राखी और हथकड़ी फिल्म से ये गीत है, आशा जी और किशोर जी की आवाज में। इस गीत को संगीत से सजाया आटी पवन जी ने, और जी हाँ, अल्फाज लिखे मशरू सुल्तानपुरी साहब ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जरूर।
1: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं हर सिंगार और कहते हैं कि हर दशक अपना एक अलग अंदाज रखता है अपना एक प्यारा अंदाज रखता है ये भी 90 के दशक का वो अंदाज था जिसे लिखा था समीर साहब ने और संगीत से सजाया था नदीम श्रवण जी ने अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे आंदोलन फिल्म से 101.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हर सिंगार और श्रोताओं कहते हैं कि जीवन में कई बार बड़े गजब होते हैं लेकिन जीवन जीने की किरण जो होती है ना वो हमारा हौसला बनाए रखती है हमें आगे बढ़ने के लिए वो कहते हैं ना अंधेरों में भी उम्मीद की किरण होती है जो दिल में हो वो तो रास्ता दिखा ही देती है जी हाँ कुछ ऐसा ही हौसला ऐसा ही सफर आप तय करते रहें इसी उम्मीद के साथ आज के हर सिंगार को समेटने की यहीं पर आपसे लेती हूँ इजाजत इस उम्मीद और इस वादे के साथ कि आप के साथ जुड़ी रहूंगी और आपसे गुजारिश यही करेंगे कि आप सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल श्रोताओं आइए सुनते हैं ये प्यारा गाना आनंद बख्शी साहब का लिखा ये गीत है आरडी बर्मन साहब का संगीत और लव स्टोरी फिल्म से ये गीत आप सुनेंगे आशा जी की आवाज़ में

0: जमाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: साहब भी अभी बता रहे थे, और जीडीपी 40% है. तो अभी सचमुच इस दिशा में बहुत कुछ करने की ज़रूरत तो है, लेकिन अर्थव्यवस्था और अगर हम देखें पूरी आर्थिकी पर गौर करें तो जो ब्रिक्स के देश हैं वो पूरी दुनिया में जो ब्रिक्स के बाहर के देश हैं उनके मुकाबले किन क्षेत्रों में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकते हैं?
1: देखिए, एक तो जैसे स्कोप बहुत ज़्यादा है. अब आप इन्हीं फिगर्स में जो जो प्रधानमंत्री जी ने दी है उसमें एक फिगर है इंटरनेशनल ट्रेड का 25%. तो यहाँ तो बहुत स्कोप है. प्रधानमंत्री जी और हमारे विदेश मंत्री जी और हमारे यहाँ एक फोकस पॉइंट ये भी है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं अभी भी संसार में, जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको हटाने की जरूरत है. इसलिए भी जरूरत है ताकि हम अपना ट्रेड और बढ़ा पाएं. हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं एमर्जिंग इकोनॉमीज के, ब्रिक्स नेशंस के, जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं तो उनको किसी तरह की नॉन टैरिफ बैरियर नहीं होना चाहिए. एक जो अब देखिए एक माहौल सा बना हुआ है जहाँ टैरिफ जो है, टैरिफ का वेपनाइजेशन होता है. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ठीक नहीं है. और ये बिल्कुल सही एम्फेसाइज किया जा रहा है कि ब्रिक्स नेशंस ने बहुत अच्छा काम किया है इकोनॉमीज में, बट स्केल अप तो करना पड़ेगा. और मुझे उम्मीद है कि ये जो है दौर चलता रहेगा डिस्पाइट द चैलेंजेस, बिकॉज रेजिलियंस की बात भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं.
2: The International Monetary Fund, IMF, has described India as a key engine of global growth after the country's economy expanded 7.8% in the first quarter of current fiscal. The stronger than expected performance was driven by services and exports, even as the economy faced an energy price shock, said Julie Kojak, director of the IMF's communications department. So yet another, you know, validation coming in this time from the IMF that, you know, the economy has grown despite all the factors that talked about earlier, that despite all the factors that are happening right now, the things that are happening right now, India's economy is still expanding, you know, expanded by 7.8%. And as the IMF official said, that basically driven by services and exports. How do you see that?
1: Well, it shows, it underlines the resilience that the Indian economy showed up when it comes to dealing with the global headwinds. And you have sometime global headwinds converting into global storm, like what happened yesterday. The tension in the Middle East escalated and challenging the energy security. So under these circumstances, if you are able to grow at a pace at which we are growing, this definitely shows the resilience, inherent resilience of our economy.
2: And before we move forward, let's listen into what the Prime Minister said during the business forum meeting today.
3: Economic strength duniya ki tulna mein kareeb 2 guni raftaar se badi hai. BRICS desh global innovation aur solutions ke liye mahatvapurn centers pe ban rahe hain. Grassroots se lekar frontier technologies tak हमारे देशों में इनोवेशन की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं. ब्रिक्स की बढ़ती स्केल, स्पीड और ऑप्टिमिज्म हमारे बीच साफ दिखाई दे रही है. भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम है.
2: Earlier today, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that resilience has become central to every nation's economic strategy, along with the need to foster and promote sustainability through deeper cooperation and stronger partnerships. Dr. Jaishankar was addressing the BRICS Business Forum in New Delhi this morning ahead of the two-day 18th BRICS Summit beginning tomorrow. He noted that digital public infrastructure, artificial intelligence, fintech and advanced manufacturing offer major opportunities, but also raise questions relating to access, standards, security and trust.
4: Today's forum brings together a much wider set of enterprises and sectors and provides a space to examine not only commercial opportunities but also the conditions that enable them. This wider canvas is reflected in the forum's agenda, supply chain connect.

0: connectivity and trade facilitation have emerged to be crucial. But so do building robust services, agriculture and agri-technology, digital delivery, MSMEs, startups and women-led enterprises.
1: Addressing the opening session of the forum, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal called upon BRICS nations to work together to translate their economic strengths into jobs, wealth and prosperity for their people.
2: Friends, BRICS today represents almost one-fourth of global trade, and India is an important pillar of the intra-BRICS trade. Engineering goods and electronics account for the largest segment of India's manufactured export. India is also known as the pharmacy of the world. We see BRICS as an important market for these and other products that India seeks to take to the world as a trusted partner.
3: Ji. प्रकाश जी, अभी हमने बातें सुनी डॉक्टर एस जयशंकर की और पीयूष गोयल जी की. जैसा कि अभी हमारे एस जयशंकर जी ने कहा कि भारत को दृढ़ता अभी दिखानी होगी हमें, एक्चुअली हर देश को दिखानी होगी ब्रिक्स में. और उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है जो संवहनीयता पर, सस्टेनेबिलिटी पर. और इसके अलावा अगर हम देखें आगे जो पीयूष गोयल जी ने कहा है, तो ये बातें अभी कुल मिलाकर क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में ब्रिक्स देशों को एक नई दिशा में ले जाने का काम करेंगी?
4: देखिए जी, दोनों मंत्री महोदय की बात को अगर मिला दिया जाए तो रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी के अलावा पीयूष गोयल जी ने बड़ी अहम बात ये की है कि मार्केट जो है विद इन द ब्रिक्स, जहाँ 40% जीडीपी है, विद इन द ब्रिक्स अगर हम मार्केट्स और ज्यादा स्ट्रांग बनाएं और ज्यादा एक्सेस दें एक दूसरे को, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड लुकिंग बियॉन्ड अमेरिका, लुकिंग बियॉन्ड वेस्टर्न वर्ल्ड. वो जो है ना फदर, बिकॉज देन अगर आपको डाइवर्सिफाई तो करना होगा. और हेयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि भाई आप विद इन ब्रिक्स में ट्रेड को बढ़ाइए, एक्सेस दीजिए एक दूसरे को, कंट्री टू कंट्री करेंसी का वो यूज कीजिए एक दूसरे का.
1: Yeah, that is exactly the point I want to make, you know, Mr. Chawla, because Piyush Goyal did say, the minister did, you know, he called upon the BRICS members to, you know, link the India's payment systems to their systems, as well as he urged the countries to trade in each other's local currencies, make digital trade global and build together for the future emerging technologies. How important is this, especially this emphasis on, you know, strengthening the digital payment system of the various countries and linking it? Because there's always been this talk of de-dollarization has been, you know, one of the things in BRICS.
4: Well, the talk of de-dollarization offends a few people.
1: Yes.
4: Few countries in the world. So without that, without de-dollarization, because that could be an issue, without that, the country-to-country trade,
1: yes,
4: in local currency is very important step as suggested by Mr. Piyush Goyal, and that I think we expect the way forward, some movement right during this summit.
1: Right.
3: जी, और ब्रिक्स देशों ने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं सहित एक तरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है. सदस्य देशों ने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और यह विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के अनुरूप नहीं है. उन्होंने WTO को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति समर्थन दोहराया. भारत की अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई. मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव, व्यापार में बिखराव, संरक्षणवाद, नीतिगत अनिश्चितता, राजकोषीय और मुद्रास्फीति संबंधी दबाव, बढ़ते कर्ज और वित्तीय जोखिमों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां बनी हुई हैं. प्रकाश जी, हम वित्त मंत्रियों की बात भी हमने सुनी जो कल बात हुई है, और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स ने भी कहा है, और सबने वही जो आप पहले कह रहे थे, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था होनी चाहिए. आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे?
4: नहीं, बहुत सही बात है. बहुत बड़ी चिंता है कि जो मल्टीलेटरलिज्म है उसको एक खतरा हो रखा है आजकल में, जब टैरिफ को हमने एक तरह वेपन बना दिया है काफी मुल्कों ने, और खासतौर पे खास

0: एक देश ने अपना वेपन बना लिया है और वो वेपनाइजेशन जो टैरिफ को आप करते हैं तो पूरे संसार में उसका असर पड़ता है और मल्टीलेटरलिज्म के फ्यूचर पे भी सवाल खड़ा होता है। इसलिए ये जो चिंता जाहिर की गई है ये बड़ी ही वाजिब चिंता है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है
1: जी। और चलिए अब नजर डालते हैं हम अब आज शेयर बाजारों का क्या हाल रहा। देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 121 अंक गिरकर 74,782 पर बंद हुआ। निफ्टी 80 अंक नीचे 23,398 पर आ गया। एनएसई का मिड कैप 100 0.3% गिरा जबकि स्मॉल कैप 100 में 0.6% की गिरावट आई। आज कारोबार की शुरुआत में सूचकांक काफी गिरावट के साथ खुले थे। कच्चे तेल की तेज कीमतों और निवेशकों की सावधानी का असर बाजार पर दिखाई दिया। आखिरी घंटे में सूचकांक अपने निचले स्तर से थोड़ा ऊपर तो आए लेकिन नुकसान में ही बंद हुए।
2: Benchmark domestic equity indices ended in negative territory today. The Sensex fell 121 points to close at 74,782. The Nifty dropped 80 points to settle at 23,398. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index declined 0.3% and the Small-Cap 100 index dipped 0.6%. Earlier, the markets opened with a gap down and traded with losses, weighed down by elevated crude oil prices and cautious investor sentiment. However, the indices spared initial losses during the final hour, supported by value buying and decline in oil prices.
1: और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे। सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों पर नजर डालें, टाटा स्टील में 1.7%, रिलायंस में 1.3% और सन फार्मा में 1.2% की गिरावट रही। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में एचडीएफसी बैंक में 2%, टेक महिंद्रा में 1.4% और एचसीएल टेक में 0.8% से अधिक की बढ़त देखी गई।
2: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द बीएसई 20 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एज्ड downward. Among the underperformers, Realty lost 2.7%, Metal dropped 2.4% and Commodities fell 1.6%. In contrast, Telecommunication advanced 1%, Private Banks gained 0.5% and IT added 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,471 companies declined, shares of 1,854 companies advanced, while shares of 234 companies remained unchanged.
1: जी प्रकाश जी, बाजार का हाल हमने बता दिया। शुरू में आज काफी गिरावट थी, थोड़ा बीच में लगभग फ्लैट होने की हालत तक फिर बढ़ा था लेकिन अंत में फिर 121 अंक सेंसेक्स गिरा है और निफ्टी भी 80 अंक नीचे आ गया है। इसको देखें और इसके साथ पूरे पूंजी बाजार को अगर हम देखें, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से बॉन्ड मार्केट की क्या हालत है पूरी दुनिया में और जिस तरह से जो पैसे का मूवमेंट है किन बाजारों से निकल रहा है और कहां जा रहा है। जापान अपने पैसे वापस ले रहा है, क्या इन सब का एक सस्टेन्ड असर अब दुनिया के बाजारों पर दिखाई देना शुरू होगा?
0: नहीं, पूरे बाजार में पहले आज की बात करते हैं
1: जी। आज
0: आज
1: जी।
0: सुबह तो बुरा हाल था
1: जी,
0: फिर रिकवरी आई, बड़ी अच्छी रिकवरी आई। अब रिकवरी जो आई वो इस तरह से नहीं आई कि जैसे संकट दूर हो गया। रिकवरी इसको ट्रेड पार्लर्स में, टेक्निकल ट्रेड्स में शॉर्ट कवरिंग हुई। लोग जब पैनिक हुआ सुबह तो ट्रेडर्स ने शॉर्ट सेलिंग काफी धड़ल्ले से की। जब धड़ल्ले से शॉर्ट सेलिंग हुई तो शॉर्ट सेलिंग के अपने रिस्क होते हैं, उसको कवर करने की कोशिश की गई, इसलिए स्मार्ट रिकवरी आई। और ये एक ट्रेड काइंड ऑफ है वो है, लेकिन इससे ये नहीं कि दुनिया की चिंता दूर हो गई।
1: ये दैनिक, ये तो आज का था,
0: आज का था। अब हम बात करते हैं कि ये कारण क्या है, कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण जो लेटेस्ट था कि जो मिडिल ईस्ट में जो उथल पुथल है और बदतर हो गई। पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिक्कत थी, अब रेड सी में दिक्कत होने लगी। तब दोनों चैनल आपके ट्रेड बंद हो जाएगा, शिपिंग रूट्स बंद आएंगे और जाहिर बात है उसका असर हमको तेल की मार्केट में मिला। क्रूड ऑयल जो 110 तक पहुंचा, फिर वापस रिकवरी हुई। तो ये उतनी उथल पुथल में मार्केट का इन्वेस्टर नर्वस हो जाता है। तो अब आपने कहा कि कारण क्या है, एक कारण तो मिडल ईस्ट है, दूसरा कारण आपने कहा बॉन्ड यील्ड का। अब बॉन्ड यील्ड जो है अपने आप में जेम्स बॉन्ड बन गया है तो वो एक अपने आप में एक खतरा है, वो क्या दर्शाता है? बॉन्ड यील्ड्स का मतलब आम आदमी की भाषा में बोला जाए ये दर्शाता है, बॉन्ड यील्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका में तो काफी ज्यादा तेजी

0: ये दर्शाता है आम भाषा में कि इन्फ्लेशन का जो डर है लार्जली अराइजिंग आउट ऑफ द मिडल ईस्ट प्रॉब्लम एंड और बाकी चीजों से इन्फ्लेशन का जो खतरा है बड़ा मंडरा रहा है पूरे वर्ल्ड पे, और उसके कारण मिडल ईस्ट भी है, उसका कारण पूरे जो संसार में खासतौर पर अमेरिका में जो उनका डेट है, उनका उधार है $40 trillion, वो अनसस्टेनेबल कोशिश की जा रही है। वहां के जो फाइनेंस मंत्री हैं, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से मैं इसकी फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग कर पाऊंगा, लेकिन री इंजीनियरिंग जो है वो एक बैंडेड होती है, उससे काम नहीं चलता
1: जी। लेकिन क्या आने वाले समय में हम पूंजी बाजार में एक रीबैलेंसिंग देखेंगे?
0: रीबैलेंसिंग का मतलब ये है कि अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, जो मैंने आपको समझाया, तो जो कैपिटल तो वहीं जाता है जहाँ इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, जब कमाई ज्यादा होती है, तो इक्विटी मार्केट में रिस्क होता है। बॉन्ड यील्ड में आपको फिक्स इनकम मिलती है, आपको अगर अमेरिका में 5-5.5% मिल जाता है, 5% मिल जाता है, और देन अगर आपके एमर्जिंग इकोनॉमीज में थोड़ी दिक्कत होती है कि उसमें करेंसी डेप्रिसिएशन का या करेंसी फ्लक्चुएशन का फैक्टर इन करना पड़ता है, तो सेफ्टी की तरफ कैपिटल पूंजी घूम जाती है, और वो जो है उसका असर जो है ग्लोबल इक्विटी मार्केट में इतना अच्छा नहीं पड़ता
1: जी। और देखें रुपए का हाल, अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 10 पैसे गिरकर ₹95.55 पर बंद हुआ। एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में आज लगभग 1.8% की गिरावट आई, जबकि जापान का निक्केई 1.9% से ज्यादा गिरा।
2: लेट्स मूव ऑन टू कमोडिटीज। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल
1: से
2: today.
1: पहले मुझे लगता है क्रूड के संबंध में अभी और भी काफी कुछ खबरें हैं अनुभव, जो प्रकाश जी से हमें चर्चा करनी चाहिए कि अभी जैसा कह रहे थे हम, पूरी दुनिया के बाजारों पर असर डालने वाला एक सबसे बड़ा कारक यह है कि सप्लाईज, हमारे क्रूड की सप्लाई कैसे होगी, कहां से होगी, रास्ते बंद होते जा रहे हैं। और आईईए ने जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें यह भी है कि कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति में रोजाना 57 लाख बैरल की गिरावट आने की आशंका है, मतलब इससे फिर अब डेली जो सप्लाई है वो 10.7 करोड़ बैरल प्रतिदिन हो जाएगा वो डेली सप्लाई।
0: आईईए ने तो एक अपनी रिपोर्ट जारी किया, नंबर दिया है, बट ये जो आशंका है ये कोई इसलिए कोई अंग्रेजी बोलते हैं नो ब्रेनर
2: जी,
0: तो नो ब्रेनर है जब
1: है ही, दिखाई दे ही रहा है
0: तो वो हाँ। उन्होंने देख नंबर देके आपको स्टैंप लगा दिया, तो वो तो एक है, गिवन है। तो अब उसमें इसके फिर सवाल ये है कि ये सिचुएशन ऐसी थी कि वार जो है जब 6 महीने से ज्यादा हो गए वार को मिडल ईस्ट में, उधर से यूक्रेन रशिया को जो है उसमें भी ग्लोबल सप्लाई चेन इम्पैक्ट हो रही है, तो ऐसी शंका जताई जा रही है और ऐसा डर है और ऐसा वो है कि भाई आर्मी ने सिचुएशन कि भाई जहां पे अंग्रेजी बोलते हैं फॉरएवर वॉर
2: जी,
0: जब ऐसी सिचुएशन में तो मुल्कों को अपने अपने देशों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से प्रिपेयर्डनेस की जाए, स्ट्रेटजिक रिजर्व्स बनाए जाएं, क्लीन फ्यूल की तरफ, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ के लिए आ जाए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट।
1: इसके साथ साथ ये अनुमान भी है कि इस साल वैश्विक तेल की मांग में 25 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट भी आएगी, जो कि पहले के 16 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट के पूर्वानुमान से थोड़ी ज्यादा है। तो अब दोनों श्रिंक होने की बात हो रही है कि शायद मांग में भी गिरावट, अब
0: उसका मुझे अंदेशा है क्योंकि डिमांड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई रिसेशन आ रहा है, उसका मुझे थोड़ा अंदेशा है
2: जी। एंड लेट्स गेट बैक टू द कमोडिटी प्राइसेस। लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल टुडे। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.2% डाउन एट $104.15 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस रिपोर्ट। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.2% डाउन एट $99.17 पर बैरल।
1: और भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.9% गिरकर ₹1,51,938 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 2% की गिरावट के साथ ₹2,28,920 प्रति किलोग्राम पर आ गई। आज अनुभव वक्त इतना ही है, खबरें तो और भी बहुत कुछ हैं, लेकिन अब चलते हैं प्रकाशी कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद
2: And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses leaders' session of BRICS Business Forum, says BRICS nations are emerging as key hubs for global innovation and solutions. Benchmark domestic indices decline, Sensex falls 121 points, Nifty settles below 23,400. And global oil supply and demand to further contract this year, says International Energy Agency. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program originally aired at 6:30 p.m.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. गीत मेरे मन मीत को प्यारे साजों से सजाकर आज प्रोग्राम में साथ हूं मैं रोहिणी. दिल के ख्यालात से दूरियों को बयां करने के अल्फाज तो निराले हैं, लेकिन कहते हैं दूरियों का गम नहीं अगर फासले दिल में ना हो, और नजदीकियां बेकार हैं अगर जगह दिल में ना हो. ये अनुभव गीत के अंदाज से भी आइए आप तक पहुंचाते हैं. आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का, जो कि दुनिया फिल्म से है और इस गीत को आवाज दी है किशोर जी और आशा जी ने. इस गीत को अल्फाज दिए हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन जी ने. तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज 100.1 मेगाहर्ट्ज़.

दोस्तों, इन दूरियों में, नज़दीकियों में कभी कभी आप सोचते हैं कि बस खामोशी ही सब कुछ बयां कर जाए। हमारी चुप्पी को कमजोरी मत समझना, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है दोस्त। जब बोलते हैं तो असर होता है और जब चुप रहते हैं तो भी बात होती है। अगला गीत आप सुन रहे हैं फासले फिल्म से लता जी की और किशोर जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए हैं शहरयार ने और संगीतबद्ध किया है शिव हरी जी ने।

100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत का ये दिलकश अंदाज आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ रोहिणी। और जी हाँ, समय जो है वो हमें इशारा कर रहा है कि आज के गीत मेरे मनमीत को यहीं समेटने की आपसे लो इजाजत। और वो कहते हैं ना, बड़े प्यारे अल्फाज हैं, शबे इंतजार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते। जी हाँ श्रोताओं, तो फिलहाल आपसे गुजारिश यही करते हैं कि सुनते रहिए, बने रहिए आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 MHz पर। ये आज के गीत मेरे मनमीत का आखिरी गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो कि है अराउंड द वर्ल्ड फिल्म से। इस गीत को गुनगुनाया है मुकेश साहब ने और अल्फाज दिए हैं हसरत जयपुरी साहब ने, और अपने संगीत के प्यारे अंदाज से सजाया है शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए श्रोताओं, फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाजत शुभ रात्रि के साथ, और इस आशा के साथ कि आप जीवन के सफर में यूं ही आगे बढ़ते रहें, हंसते मुस्कुराते और जिंदगी के रंगों में अपने अनुभव को लेते हुए। फिलहाल सुनते हैं ये गीत 100.1 MHz पर, ये प्यारा अंदाज।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष

0: राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरेश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तमिल भाषा की शास्त्रीय और कालजयी ज्ञान कृति तिरुकुलर का रूसी अनुवाद सौंपे जाने की सराहना की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोलिक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। उधर भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम आज सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. निशिगंधा लेकर माधुरी है आज आप सभी के साथ. नमस्कार. इस उम्मीद पे रोज चराग जलाते हैं, इस उम्मीद पे रोज चराग जलाते हैं, आने वाले बरसों बाद भी आते.

बहु बेगम फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप मोहम्मद रफी साहब की आवाज में इंतजार कह लीजिए बाट जोहना कह लीजिए राह देखना आस लगाना उम्मीद रखना या फिर किसी का आसरा देखना कह लीजिए किसी भी तरह से इस इंतजार को आप बयां कर सकते हैं और आज निशिगंधा में हम इसी इंतजार को लेकर आए हैं इंतजार सिर्फ वक्त का गुजर जाना नहीं है ये वक्त को महसूस करना है घड़ी की सुई रोज चलती है पर जब हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं ना तब हर सेकंड और लंबा हो जाता है इंतजार में एक अजीब कशिश है एक सुकून भी है एक अजीब सा दर्द भी है

खामोशी फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप हेमंत कुमार के आवाज में। बात इंतजार की। इंतजार के भी अलग अलग रूप हैं, प्रकार हैं। बचपन में जब शाम होती तो बच्चे को इंतजार रहता है ऑफिस से लौट रहे उसके पिता का, और समय बदला, माँ भी ऑफिस जाने लगी और माँ का भी उसी तरह इंतजार होने लगा, और साथ साथ उन मजे मजे की चीजों का इंतजार जो माता पिता लाने वाले होते हैं। लेकिन वही इंतजार जवानी के दहलीज पर अलग रंग ले लेता है। इंतजार हो जाता है महबूब की एक झलक का, उसके भेजने वाले संदेशों का इंतजार। इसी तरह हर उम्र में, हर दौर में, हर चीज का अलग एक इंतजार होता है, और हम किसका रास्ता देख रहे हैं।

से चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे गीत फिल्म डॉन से लता जी और किशोर कुमार की आवाजों में। आज निशिगंधा में हमने जिस टॉपिक को लिया है वो है इंतजार। हम सभी को किसी ना किसी का इंतजार होता है, किसी के काम बनने का इंतजार होता है, कहीं जाने का इंतजार होता है, कुछ पाने का इंतजार होता है। किसान को बारिश का इंतजार होता है, छत पर गीले कपड़ों को धूप का इंतजार होता है, कोई गांव लौटने के इंतजार में है, किसी को परीक्षा के बाद परिणाम का इंतजार है, पकी फसलों को कटाई का इंतजार है, सब अपने अपने उम्मीद के इंतजार में होते हैं। अभी आपको भी इंतजार है अगले गीत का, हमें मालूम है, तो चलिए शुरू करते हैं अगला गीत।

इंतज़ार पर ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने सुना फिल्म शराबी से आशा जी और किशोर कुमार की आवाज़ों में। इंतज़ार करना आसान नहीं है, ये सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बस उम्मीद को जकड़कर पकड़कर बैठे रहते हैं। इसीलिए ये बेचैन भी करता है हमें, रात भर नींद नहीं आती, बार बार दरवाजे की तरफ देखा जाता है, फोन चेक किया जाता है, लेकिन इसी बेचैनी में दिल जिंदा रहता है। जिसका इंतजार खत्म हो जाए उसकी कहानी भी शायद खत्म हो जाती है, और आंखों में इंतजार ही हमें दूर तक देखते रहने को मजबूर करती है, आशावान रखती है हमें।

इंतज़ार दर्द तो देता है, तकलीफ तो देता है, पर हमें बेहतर भी बनाता है। कैसे? ऐसे कि जो इंतज़ार करना जानता है वो सब्र करना जानता है, वही रिश्ते निभाना भी जानता है। उसे रिश्तों की कद्र आती है, वो रिश्तों की कद्र करना समझता है और जानता है। जो चीज़ इंतज़ार के बाद मिलती है उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। और एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर है इस पर कि ये इंतज़ार की घड़ियाँ, ये शब का सन्नाटा, इस एक शब में भरे हैं हज़ार साल के दिन।

ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म विजयपथ से, आवाजें साधना सरगम और साथियों की। आज का दौर जो है वो कुछ अलग है, सब कुछ हमें जल्दी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट मैसेजेस हम भेजते हैं, इंस्टेंट हमें डिलीवरीज चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, सब कुछ जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं हम। और इस जल्दबाजी ने हमसे इंतज़ार का सुकून छीन लिया है। अगर आप आज का इंतज़ार कर रहे हैं या आप किसी का भी इंतज़ार कर रहे हैं तो घबराइए मत, ये वक्त जो है ना खाली नहीं जा रहा है, ये वक्त आपको सिखा रहा है, आपको तैयार कर रहा है, क्योंकि इंतज़ार का फल हमेशा मीठा ही नहीं होता, गहरा भी होता है।

0: इसी के साथ निशिगंधे का ये सफर यहीं समाप्त होता है. आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना. अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा. सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोजा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे. दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा. प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं. प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की. दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया. श्री मोदी ने

0: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
0: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। पुलिस ने लोगों को यथासंभव सार्वजनिक परिवहन, खासकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य में तेजी लाने और योजना क्रियान्वयन को गति देने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना द्वितीय चरण के तहत कुल 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्यालय मंत्री की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 9वीं बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defense, energy, space, skill mobility and people-to-people domains yesterday. During their bilateral talks in New Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts and India stood ready to assist in peace efforts. The External Affairs Ministry said in a statement that Prime Minister Modi and President Putin welcomed Russia's International Industrial Exhibition InnoProm India. President Putin invited Prime Minister to visit Russia for the 24th India-Russia Annual Summit. Prime Minister accepted the invitation. Mr. Modi gifted Mr. Putin a Russian translation of the Thirukural, the ancient Tamil classic by poet-philosopher Thiruvalluvar, during their meeting. During his bilateral meeting with Iranian President Masoud Pezeshkian, Prime Minister Modi exchanged views on recent developments in West Asia. Mr. Modi reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi also underscored the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region, safeguarding freedom of navigation and commerce and the safety and well-being of seafarers. The Prime Minister thanked Iran for its regular high-level participation in the BRICS-related meetings despite the challenging circumstances. The Prime Minister also held a bilateral meeting with UN Secretary General Antonio Guterres. Prime Minister Narendra Modi has said that BRICS nations are emerging as important centers of global innovation and solutions. Addressing the leaders' session of BRICS Business Forum at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday, Mr. Modi said the economic strength of BRICS has grown at nearly twice the pace of the rest of the world. He said new possibilities for innovation spanning

यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. गीत सुहाने लेकर माधुरी है आप सभी के साथ. एक बार फिर नमस्कार. और चलिए शुरू करते हैं इस सफर को जिसमें हम सुनते हैं सुहाने पुराने गीतों को.

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गीत आप तक पहुंचा फिल्म मेरे सनम से, ओपी नैयर का संगीत और मजरू सुल्तानपुरे की बोल। और जब भी प्यार की बात होती है तो बड़ी खूबसूरत बात होती है, किसी से प्रेम हो जाए तो उसे पाने की जिद मत करना, बस उसके होने से तुम्हारे भीतर जो खुशी खिली है उसे उसी तरह खिलने देना।

नैना फिल्म से गीत सुन रहे थे आप, आवाज मोहम्मद रफी साहब की और संगीत शंकर जयकिशन का। बात हो रही थी प्रेम की, किसी से प्रेम हो जाए तो उसे पाने की जिद मत करना, बस उसके होने से तुम्हारे भीतर जो खुशी खिली है उसे उसी तरह खिलने देना, क्योंकि हर प्रेम का मुकाम मिलन नहीं होता। कुछ प्रेम केवल इसलिए आते हैं कि वे हमारे भीतर की कठोरता को पिघलाकर हमें थोड़ा और सुंदर बना सकें। इसलिए अगर कोई तुम्हारे जीवन में प्रेम का एहसास छोड़ जाए तो उसे पाने की नहीं, उस एहसास के लिए धन्यवाद देना उसका कि उसने आपको ये कला दी। क्योंकि कुछ लोग हमारे होकर नहीं, हमें प्रेम करना सिखाकर हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आपकी परछाइयां से, मदन मोहन का संगीत। और बात आगे क्या बढ़ाएं, कुछ तो खास होता होगा ना कुछ लोगों में कि उनसे बात किए करसा बीत जाता है, मगर हमारी खामोशियों में आज भी वही सुनाई देते हैं। होता है ना ऐसा आपके साथ भी?

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्यारे प्यारे गीत यहां हम लेकर आते हैं आपके लिए गीत सुहाने के इस सफर में। एक बड़ी ही अच्छी हम बात कर रहे थे कि कुछ खास ही होता है कुछ लोगों में कि अरसा भी बीत जाए तो जो उनके खामोशियां होती हैं वो हमें सुनाई देती हैं, ना कोई संदेश, ना कोई मुलाकात, ना कोई खबर उनकी, फिर भी न जाने कैसे हर बात के पीछे उनका जिक्र आ ही जाता है। शायद कुछ लोग हमारे जिंदगी में रहने के लिए नहीं, हमारे भीतर बस जाने के लिए आते हैं। और सच में जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं कि न चाहते हुए और चाहते हुए भी हम उनकी बातें करते हैं।

भाई इतना सोने की जद पकड़ के इस गीत में बैठ गए हैं कि सचमुच मुझे भी यहाँ बैठे बैठे अब नींद आ रही है. लेकिन जो इन गीतों की मधुरता है ना, ये सोने भी कहाँ दे रही है. ये गीत सुन रहे थे आप येसुदास की आवाज में फिल्म आलाप से. क्या हुआ है कि तुम उदास हो, क्या हुआ है कि तुम उदास हो, क्या फिर तुम्हें सुना नहीं गया, क्या टूट गया है कुछ अंदर तक, क्या पिघल रहा है तुम्हारे अंदर कुछ. ये भय है, पश्चाताप है या सूनापन है, क्या हुआ है कि तुम उदास हो.

फिल्म साथी से ये गीत सुन रहे थे आप मुकेश की आवाज में नौशाद के संगीत के साथ। वक्त का काम ही है आगे बढ़ते रहना और हमें वक्त के साथ चलना है। संसार कहता है प्रेम पागल कर देता है, किंतु तुम्हारे प्रेम ने मुझे समझदार कर दिया। अब मैं तुम्हें खोजने नहीं निकलता किसी गली किसी पते किसी शहर में, क्योंकि समझ गया हूं जिसे दिल में बसाया हो उसे रास्तों पर ढूंढना व्यर्थ है।

लता जी की आवाज में अनुपमा फिल्म से गीत सुन रहे थे आप। सच ही कहा है कि जिसे दिल में बसाया हो उसे रास्तों पर ढूंढना व्यर्थ है। अब मैं बाहर नहीं अपने भीतर उतरता हूं, अपने मन के तहों को टटोलता हूं, जहां तुम्हारी याद अब भी किसी शांत दीपक की तरह जलती है। तुम मिले या नहीं ये प्रश्न अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। तुम्हारे प्रेम ने मुझे इतना तो सिखा दिया कि किसी को पाने से बड़ा है उसके प्रेम में स्वयं को पा लेना।

लता जी की आवाज में ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म बहारों के सपने से और गीत सुहाने का ये सफर अब बस अपने अंतिम पड़ाव पर है। ये आखिरी गीत गीत सुहाने से आप सभी के लिए फिल्म झील के उस पार से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोजा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन

0: सीफेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों में यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा योजना पहले से निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। यूरोपीय आयोग ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और अब ये जो सफर है ये है रात सुरमई जिसे लेकर आज की रात मैं माधुरी हूं आप सभी के साथ नमस्कार
1: आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता है

हर कदम जिंदगी ने आजमाया मुझे, तन्हाइयों ने हर मोड़ पर बुलाया मुझे, मंजिल के तलाश में निकला था एक राही, न जाने किस सफर ने अपना बनाया मुझे।

याद दिला दें आपको कि आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. रात्रि के 2:33 और हो गए हैं पूरे 53 सेकेंड. ये सफर है रात सुरमई का, जिसमें आज मैं हूं माधुरी आप सभी के साथ. बात करते हैं ख्याल की. ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे.

बिल्कुल, मुसाफिर को घर ही आना है और बहुत दूर चलते चलते थक गए हैं और हमें भी अब घर जाना है। तो रात सुरमई का ये आखिरी नगमा आप सभी के लिए, इसके साथ ही इजाजत दीजिए माधुरी को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत

हमारे दोस्तों ने ट्यून किया है एफएम गोल्ड चैनल, और इस चैनल पर मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चौक हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत गीतों के साथ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों, नज़र किसी की खफा नहीं होनी चाहिए, और अगर खफा हो भी जाए तो मनाने वाला कोई अपना ही होना चाहिए। दो गलियां फिल्म से अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत साहिल लुधियानवी का था और संगीत रवि का। अगला गीत आप सुनेंगे चोर मचाए शोर फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। इंद्रजीत सिंह तुलसी की रचना है और रविंद्र जैन की बनाई हुई धुन।

दोस्तों अगला गीत कह रहा है कि प्यार करने वाला अगर दिल पर नाम लिख रहा है तो उसने लिखने देना चाहिए।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत था आराधना फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग।

अपना देश फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा था और आर डी बर्मन की बनाई हुई धुन थी। अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ इश्क पर जोर नहीं फिल्म से। आनंद बख्शी का गीत है और सचिन देव बर्मन का संगीत।

और अब अगला गीत आप सुनेंगे आदमी और इंसान फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद महेंद्र कपूर की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी की रचना है और रवि की बनाई धुन।

0: करती हो?
1: हो जाती आजादी है?
0: नहीं नहीं, सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: Muskerei.
1: Beleza na Muskerei. Beleza na Muskerei.
2: कल आज और कल, ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। नीरज का लिखा गीत था और शंकर जय किशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे दीवार फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज है। साहिर लुधियानवी ने गीत की रचना की है और आर डी बर्मन के बनाए हुए धुन।
1: ना
3: दिल में मेरे आज क्या है,
1: क्या है

दोस्तों अब अगला पड़ाव आ गया है यानी हमराही कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव खेल खेल में फिल्म से गीत आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में गुलशन बावरा की रचना और डी बर्मन का संगीत

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हज़ार

0: और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम हमरा ही अब संपन्न होता है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नागरिकों की सुरक्षा का समर्थक है।
2: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि उसने देश की एक प्रमुख तेल पाइपलाइन एहतियातन बंद कर दी है। यह पाइपलाइन ऐसे समय बंद की गई है जब यमन में हौसी विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के पास तटीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इससे इस महत्वपूर्ण समुद्री

दोस्तों समय हो गया है 4:11 और अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग सुप्रभात।

हम राज फिल्म से ये गीत आपने सुना, महेंद्र कपूर का गाया हुआ, साहिर लुधियानवी का गीत था, रवि का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे जंजीर फिल्म से, मन्ना डे का गाया हुआ, गुलशन बावरा ने गीत को लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

तेरे मेरे मिलन की ये रहना। अभिमान फिल्म से ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा था और आर डी बर्मन के बनाए हुए धुन थे। अगला गीत आप सुनेंगे दुल्हन वही जो पियावन भाए, ये सुदास बनाश्री सेन गुप्ता और हेमलता का गाया हुआ गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा।

घर के 2-4 दिन। सही बात है दोस्तों, भले ही जिंदगी छोटी हो लेकिन अच्छी और खुशियों भरी होनी चाहिए। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने ये गीत सुना सच्चाई फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे संघर्ष फिल्म से, लता मंगेशकर का गाया हुआ, शकील बदायूनी की रचना है और नौशाद का संगीत।

दोस्तों, अब आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक बार नदी और सागर में बात हुई तो नदी कहने लगी सागर से, तुमसे ही मैं जीवन पाऊँ, सो आकर तुम में मिल जाऊँ। सागर बोला, नदिया बोलो, कब तक ये कर पाओगी, मेरे खारेपन को आखिर कब तक गले लगाओगी। नदिया बोली, मैं मीठी हूँ, मीठा जल ही लाऊंगी, जब तक तुम मीठे ना होते तब तक फिर आऊंगे। और हम भी ऐसे ही अपने स्वभाव को बनाए और सामने वाले के स्वभाव को भी बदलने की कोशिश करें।

मुकेश की आवाज में आपने ये गीत सुना, अनोखी रात फिल्म से। इंदिवर की रचना थी और रोशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे शक्ति फिल्म से, महेंद्र कपूर का गाया हुआ। आनंद बख्शी की रचना है और आर डी बर्मन का संगीत।

दोस्तों हम तो चाहते हैं कि आपकी भी सारी तमन्नाएं ख्वाहिशें पूरी हो जानी चाहें और अब मेरा मन कह रहा है कि माँ पर भी आपको एक गीत सुनवाया जाए जो हमारे लिए भगवान का दूसरा रूप होती है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने ये गीत सुना राजा और रंग फिल्म से। आनंद बख्शी की बेजोड़ रचना थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे तकदीर फिल्म से, लता मंगेशकर और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ में। आनंद बख्शी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दोस्तों, बच्चों को खिलौनों से ज्यादा अपने माता पिता से प्यार होता है और उन्हें माँ बाप के साथ लगाव भी होता है। और इस गीत के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्र अध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम ₹3,000 की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इस पेंशन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता और सम्मान के साथ जीवन जीने में सहायता देना है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य में तेजी लाने और योजना क्रियान्वयन को गति देने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना द्वितीय चरण के तहत कुल 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में शहरी विकास विभाग सचिव सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 9वीं बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। वहीं महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में कल दुबई में भारतीय टीम का सामना पिछले चैंपियन श्रीलंका से होगा। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भक्ति रचना से, और कार्यक्रम का नाम आपको मालूम ही है, भोर सुहानी। और अपने दोस्त वंदना चुक्का कीजिए प्यार भरा नमस्कार।

द बर्निंग ट्रेन। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, पद्मिनी कोल्हापुरी और साथियों का गाया हुआ, साहिल लुधियानवी की रचना थी और आर डी बर्मन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे पूर्णिमा फिल्म से, रचना सुमन कल्याणपुर की है और भरत व्यास ने गीत को लिखा है और धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

दोस्तों जब हम किसी से मुस्कुराकर मिलते हैं तो सामने वाले को भी पॉजिटिविटी मिलती है और किसी का हालचाल पूछ लेने से किसी को ऊर्जा मिलती हो तो आपको उसके लिए ऊर्जा स्रोत जरूर बन जाना चाहिए।

कपिलेंद्र की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे तीसरी कसम फिल्म से। ये गीत मुकेश की आवाज में है, हसरत जयपुरी की रचना है और शंकर जयकिशन का संगीत।